हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगाश। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगाश।

ना जाना। तुम पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी।

अनेक करें हर पूजा जी, तप तापें जपें बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भावें मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू निचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करें सो होई, तुद आपे सृष्ट सब पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सहका जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिस नौ तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तने किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू ना ही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नकाम, मिर साध संगत पद केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ, जब तब संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा, कभी उबाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो, आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिए, साबैरन को आस संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा।

काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सुबारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैं जशन उपजायो। आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिव कण को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पढ़ पढ़ की जान। जबुद करख करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा। जब या करख कर तू कबू, तुम मैं मिलत दे तार सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरियालम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद नील अनाद संभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव,

सिमट पियो शंकर इकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अवरक्षा मेरी तुम करो, सेखो बार सेख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जेस तुझ तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुगत वै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारी, तिनके तुम संकट सबटारी, जो कल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकटने हैं, रशा होए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो, ताकि ताप तनक मोहर हो, रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शास वै सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोहते रहा, खड़केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लियो बारी, सर्वठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोहते लेहो बचाई सोइया।

तेक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री सपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो दोहरा। सगल

राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो अरनाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा कर सब सवारना

कहे नानक मन मेरे सदारुवर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरै। घर तां तेरै सब कुछ है जिस ने सो पावे। सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटो। जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दू तुदवश कीते काल कंट कुमारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक तांस कुआ तित करे अनहद वाजे। आनंद सुनो विड़पागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पुवित सतगुर आ पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पई ओ सासन तूह विचारू। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारू।

ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसै मेरे ही रह, संग पुनीता देही

हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखाऊ तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी महला पंजवां।

सुख कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दासु सदा बोलना जी सतनाम वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लही त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासै हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे घर नौ निदयावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत

हे संतां के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हम दास रो मैं निर्गुण गुणी कोय, नानक दीजे नाम दान राखो हिय परो। हे पौ असलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंद पसोहोदरा गुरुदेव दाता नाम उपदेसा गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा।

जुग में धर्मा। जन को नाम बढ़ाई सोभ, नामो गत नामो पत जन की, नामो गत नामो पत जन की, माने जो जो हो गुरहाओ। नाम धन जिस जन कै पाले, सोई पूरा शाह, नाम बिहारा नानक आधारा, नाम प्राप्त लाहा तनासरी। महला पंजवा। नेत्र पुनीत भय दर्श पेखे, माथे परोर वाल, रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो रखनहार दयाल, सुंदर सो कर बेअंत पिता प्रभु, हो प्रभु कृपाल रहाओ। तुम तो रखनहार दयाल, महानंद मंगल रूप तुम रे, बचन अनूप रसाल, हृदय चरण शब्द सतगुरु को, नानक बांधियो पाल तनासरी। महला पंजवा। अपनी औकत खिलावे भोजन, अपनी औकत खिलावे सर्ब सुख भोग, रस देवे मन ही नाल समावे।

तुम मारा निरखो तुमरी ओर हरनी तुमरार सहाय हो दास को कर गए उदरों मीत रहाओ। सुनी बिनंती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक नंद पए दुख भागे सदा सदा हर जाप तना श्री महला पंजवा। चतुर दिशा किनो बल अपना सिर उपर कर तारियो कृपा कटाक अवलोकन किनो दास का दुख बिदारियो।

चरण तुम्हारे हृदय वस हे संतन का संग पावो सोग गन में मन न व्यापै आठ पहर गुण गावो। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जन्म ना छापन।

मात पिता पाई सुत बनता तांगे रास लपटाना जो बन धन प्रभुता कै मद मैं निस रह दीवाना।

विद्मन को संसा चुके भौ निद पार परो रहाओ। जन्म पायो कछ पलो ना कीनो तांते अधिक डरो मन बच कर्म हर गुण नहीं गाए यह जिय सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो पास ज्यों उदर परो कहो नानक प्रवृत पछाणो तब हों पातत तरो। तनासरी महला पहला कार दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संद चुगै नहीं दूरे हर रस चोग चुगै प्रभावै सर्वर मैं हंस प्राण पत पावै।

दुबदा छोड़ पए निरंकारी। मुकत पदार्थ हर रस चाखे, आवण जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ न जाए। प्रेम भगत कर सह समाए, सर्वर मैं हंस हंस मैं सागर, कथ कथा गुर बजनी आदर। सुन मंडल इक जोगी वैसे, नार न पुरख दोहों कहो को कैसे। त्रे पवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर ना सचे शरणाई, आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमु भगत सहज बिचारी। भगत वच्छल पै काटन हारे, होमे मार मिले पग धारे, अनक जतन कर काल संताए, मरण लखाए मंडल महयाए। जन्म पदार्थ दुबदा खोवै, आपना चीनस भ्रम भ्रम रोवै, कह तो पढ़ तो सुन तो एक। धीरज धर्म तरणी तर टेक, जात सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पतियाए। साजे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द परम पौ भागै, सूरत मूर्त आनंद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी। महला पहला। सहज मिलै मिलिया प्रवान, ना दिसमरण ना आवण जान। ठाकुर मैं दास दास मैं सोए, जहां देखा तहां वरन कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईए, बिन गुर पेटे मर आईए जाईए रहाओ। सो गुर करो जे साच दृढ़ावै, कथ कथावै शब्द मिलावै, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभु के लागे पाए, सतगुर पूरा मिले मिलाए। आप देखा वै आपे देखै, हठ ना पति जै ना बो भेखै, घाड़ भांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया। पढ़ पढ़ भूलै चोटा खाहे, बहुत स्याण पया वै जाहे, नाम जपै पो भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए।

मेल प्यारे। किस आगे प्रभ तुद सा लाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही। ज्यों तुद भावै त्यों राखर जाए, नानक सहज पाए गुण गाए। तना श्री महला पंजवां घर, छेवां अष्टपदी एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद जो जो जूनी आयो, तेह तेह उर जायो। मानस जन्म संजोग पाया, ताँ की है ओट साध। राखो दे कर हाथ, कर कृपा मिलो हर राय। आ

अन्न को पाव करो माया को बचित धरो मेरी मेरी करत सद ही विहावै। कोई ऐसो रे संत भेटै कोई ऐसो रे भेटै संत मेरी लाहै सगल चिंत ठाकुर स्यों मेरा रंग लावै। पड़े रे सगल भेद ने चूकै मन भेद एक खिन्ना धीरै मेरे घर के पंचा। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा। जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा नंद ज्ञान अंजन मेरा मानिश नाने। सगल श्रम की ने मनुआ ना पति ने बबेकहीन देही तो ए कोई पाइये रे पुरख विदाता पार ब्रह्म रंग राता मेरे मन की दुर्मत मालक होए। कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़ै कही ना लेखै जिस भेटिया सगल मूरत करै। सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै।

तिस भेटेंगत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोबिंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल भई सफल जत राय आवण जान रहे मिल साधा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसाहरा हाओ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ धरणी धरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साज तीर्थ मजना साज न लागे मैल क्या माल धोइय गुण है हर परोए किस कौ रोइय विचार मारे तरे तारी उल्ट जो नावे आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद आंदन हरख साचा दुख कल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मनै

अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी, भुख प्यासो आथ क्यों दर जाय सा जियो। सतगुर पुछो जाए नाम ते आए सा जियो, सच नाम दे आई साच वाई गुरमुख साच पछाण। दीना ना दयाल निरंजन आंदन नाम बखाना, करनी कारतरों परमाई आप मुआ मन मारी।

गौर शब्द विचारी नाह प्यारी निव निव भगत करे ही माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे ही। प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सुहागण पिरसें प्रीत प्यारी। फिर घर सो है नार जिपर भावे जियो झूठे वैण चवे काम न आवे जियो। गुर शब्द न मन फाही फाथी सातन महला पाए नानक आपे आप पछाण गुर।

अतीत वै रागी हलत पलत सोभा जग यंतर राम नाम लिव लागी। हरख सोग दोहा ते मुगता जो प्रभ करे सो पावे सत संगत मिलै वड भाग तहां रस आवै जियो।

Dio. माया दुख मोहे आ हो मैं रोहे आ मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाहीं अंत गया पछोतावे बिन नावै को साथ ना चालै पुत्र कलत्र माया तोहिया दूजै पाए दुख होए मनमुख जम जोहे आ जियो बिन नावै को साथ ना चालै पुत्र कलत्र माया तोहिया दूजै पाए दुख होए मनमुख जम जोहे आ जियो कर कृपा ले हो मिलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन भावै ता हुक्म समावै हुक्म मन सुख पाया अंदन जपत रहे दिन राति सहजे नाम त्याया नामो नाम मिले वड्याई नानक नाम मन पावे कर कृपा ले हो मिलाए महल हर पावे जियो तनासरी महला पंजवा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जियो अमृत हर का नाम सात संग रावी है जियो भज संग साधु एक अराधु जन्म मरण दुख नस ए तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कटी जमकी फस ए पै परम नाठे छुटी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक धार कृपा सदा हर गुण गावी है

दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरा सगल तेरी सारिया।

गुण गाए जीवा हर जपो बनवारिया तेरा दर्श पार नाम मोलई जियो। नित जपे तेरे दास पुरख अतुलई जियो। संत रसन बूठा।

जब लग जोत काया में बरते आपा पशु ना बुझे। लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा, केवल राम जपो रे प्राणी पर हुए एक की शरणा।

क्या मांगो किछ थिर नाहीं, राम नाम राख मन माही रहाओ। शोभा राज बिपै बड़ियाई, अंत न गाहो संग सहाई। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कब न सुख पाया।

राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाउ। बनता सुत देह गृह संप सुखदाई, इन मैं कछ नाहे तेरो काल अवध्याई। अजाम लगा जगन का पतत कर्म की ने, ते अमृत काहे बिख खाई। ते उत्तर पार परे राम नाम लीने, सूकर कूकर जोन भ्रमे तौ लाजना आई। राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। ताज परम कर्म बिदन खेद, राम नाम ले ही गुर प्रसाद। जान कबीर राम कर स्नेही, तनासरी बाणी भगत नामदेव जी के ओंकार। सतगुर प्रसाद गहरी करके नीव खदाई, उपर मंड पछाए मार कंडे ते खोद काई। जन तृण तार मूंड बलाई, हमरो करता राम स्नेही काहे रे। नर गर्भ करत हो बिनस जाहे, झूठी देही रहाओ। मेरी मेरी कैरों करते, दर जो दिन से पाई। बारह जो दिन छतर चले था, देही गिरजन खाई। सर्ब सोयन की लंका होती, रावण से अधकाई। कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन मैं पही बराई। दुर्वासा स्यों करत ठकोरी, जादवे फल पाए। कृपा करी जने अपने, उपर नाम देओ हर गुण गाए। दस बैरागुण मोह बस, किन्नी पंचों का मिट नावो। 70 दोए भरे अमृत सार, बिख को मार कढ़ावो। पाछे बोर न आवो पावो, अमृत बाणी घटते उचरो। आत्म कहो समझावो रहाओ। बजर कठार मोह है छीना, कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेव, भगतन ते डर पावो।

हमसा दीन दयाल न तुम सर अब पत्यार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजै। हम बल बल जाओ रमैया कारणे कारण कबने बोल रहाओ। बहुत जन्म बिछरे थे माँ दोह जन्म तुम्हारे लेखे। कहर विदा सास लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन बलोकनो श्रवण बाणी सो जस पूर राखो। मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन खटै।

एको रहाओ तम दियरा निर्मल बाते तुहे निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने पूर्ण परमानंद बखाने। मदन मूरत पैतार गोबिंदे सैन भणे भज परमानंदे। पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति। कायो धूप दीप नहीं बेदा कायो पूजो पाती। काया बहुखंडी खोजते नवनित पाई।

जो जन तुमरे भक्त करन ते दिन के काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करन तजियो, पनिया साधन निका नाज मंगो सात सीका। गौ पैस मांगो लावे री, कताजन तुरी जंगेरी, करके गेहन जंगी जन तन्ना लेवे मंगी। जैत श्री महला चौथा, कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे ही अरे रत्न नाम हर बसिया, गुर हाथ धरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो ऋण लाथा।

हर हर कृपाल कृपा प्रभु धारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ। हर कीरत कल जुग पद उत्तम हर पाइये सतगुर माजा हो बलिहारी सतगुर अपने जन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध कृपा बड़भागी दर्शन साध मिलियो बड़भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर शाह पाया बटदाना हर किए बहुगुण सांझा। जिनको कृपा करी जग जीवन हर उर तारियो मन माजा धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा तनासरी महला चौथा। सत संगत साध पाई बड़भागी मन चल तो पयो रूड़ा नह तुन वाजे नित वाजे हर अमृत धार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा मेरा मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिल्यो लाए च पीड़ा रहाउ। सागत बंद पए है माया बिख संचे लाए ज कीड़ा हर कै अर्थ करचे नह साके जम काल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा हलत पलत हर सोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा।

जैत श्री महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर सिमरो अगामे अपारा जी सिमर दुख मिटे हमारा हर हर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे हर हर नाम रखो रतारे हर हर अमृत बचन सुनावो गुर मिलिए प्रगट होई राम।

हर हर हर जस कुमर पव हो मिल सत संगत नाम महाराम। आओ सखी हर मेल मिलाहा सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा दार गुर मिल हो गुर मिलिय हर महाराम। हर कीर्त जसा गम था खिन खिन राम नाम गावाहा। मुख उतार कृपा गुर मिली है गुरदाते हर नानक भगत महाराम। जय श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा मान राम नाम पीना लैलाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती गुरमत भगत महाराम।

सखी मिलहो मिल गुण गावा, गुरमुख नाम जपहो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम महाराम, आपे वडदाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभावै, गुरु नानक नाम महाराम, जैत श्री महला चौथा। मिल सतसंगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा। हर हर कृपा धार मधुसूदन, मिल सतसंगत महाराम।

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपन गुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नार सलोक भी महले पहले के लिखे।

रचो नाओ दोई कुदरत साजे करा संडे टोचाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे बसाओ तू जाने सबसे दिला सह जिंद कवाओ करे संडे टोचाओ करे सनो डेटो चाओ।

दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार। चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार। एक होदा

0: द्वापर रत अपै का सत अग्रथवा काल युग रत अगण का कूड़ अग्रथवा हो महला पहला।
1: शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे

अमृत संत चुगै। जिहड़े अमृत वाले ने वह इनू चुगदे ने। वेखो चीजां चुगियां भी अपनी मत बुद्ध अनुसार ही जांदियां ने। बहुत सारे लोग धार्मिक स्थानां ते जांदे ने चुगदे की ने, कोई जहर ही चुग के लै जांदा निंदिया दा, जिदां दी बुद्धि हुंदी है बंदा उदां दीआं चीजां चुगदा ना। जिदां दी मत होवेगी तुसीं उदां दी चीज चुकोगे, जिदां दी समझ होवेगी, जिदां दा विवेक होवेगा बंदा उदां दी चीज नूं चुक के लै जाएगा। कोई बहुत कीमती चीज पई होवे ते जे बंदे नूं सारी कोई नहीं, एक पासे हीरा पिया होवे ते दूजे पासे रोटी पई होवे, ते जिहड़ा भुखा है वह किनू हाथ पावेगा? जे उहनूं समझ नहीं है वह रोटी नूं हाथ पा लवेगा। उहनूं यह नहीं पता भी जे मैं हीरे नूं हाथ पावां ते की होवेगा, पीढ़ियां तक की भुख दूर हो जाएगी, घर विच गुरबत ते कंगाली निकल जाएगी। पर भुखा बंदा बिना समझ वाला किनू हाथ पावेगा? रोटी नूं हाथ पावेगा। हुण गुरु वो सागर है जिहड़ा रतना दे नाल भरिया पिया। महाराज कहिंदे गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। नहीं दूरे दा मतलब है दूर नहीं जाते, इस सरोवर के कोल कोल रहिंदे ने। जिथे बंदे की रोटी पानी लगा होवे ना जी, बंदा कहिंदा उत्थे लागे बन्ने घर लै लो, सौखे रहांगे। तो सिख दा जिहड़ा जिहड़ी उहदी रूह की खुराक है वह गुरु ग्रंथ साहब दे विच है, ते सिख वह है जिहड़ा गुरु तो दूर नहीं जांदा। एक बख्शिश भरिया वाक महाराज बाणी विच होर भी रखते हैं, उत्थे वह कहिंदे ने हर सर सागर निर्मल सोई। हरी सरोवर है, सागर है, बड़ा निर्मल है। हर सर सागर निर्मल सोई, संत चुगै नित गुरमुख होई। ते संत जन गुरु की शरण विच पै के हरी सागर विच चुभियां मारदे ने। इशनान करें, इत्थे इशनान करना, इहनू ही महाराज ने आखिया सी रामदास सरोवर नाते सब उतरें पाप कमाते। हुण आम श्री दरबार साहब भी सरोवर है, चलो कितने छमाही साल बाद दो साली पंजी साली जाते हो तो जरूर चुभी मारिया करो, पर एक सरोवर तो गुरु ग्रंथ साहब के रूप में तुहाडे कोल ही है, ये सरोवर तो कोल ही है। ये किहदा सरोवर है? राम दे दासां दा, पैंती महापुरखां दा, ये सरोवर साढ़े कोल है। तो महाराज ने यदि गल की रामदास सरोवर नाते सब उतरें पाप कमाते। सारे पाप जिहड़े बंदा अंदर कमाउंदा जदों गुरु रामदास राम दे दासां दे सरोवर विच चुभी मारदा है ते अंदरों निखर जांदा, अंदरों धुप जांदा। तो महाराज ने आख्या कर इशनान सिमर प्रभ आपणा। आख्या सिमर रब नूं, अकाल पुरख वाहिगुरु नूं उहनूं चेते कर, इस तों वड्डा होर कोई इशनान नहीं है। ते जे तूं बाहर दे तीर्थ ते नहाउंदा फिरदा ते इह वी चेता रखी। महाराज ने बाणी च कहा अंतर मैल जे तीर्थ नहावै, जे अंदर मैल है बाहर तीर्थ ते नहाउंदा फिरदा। अंतर मैल जे तीर्थ नहावै तिस बैकुंठ न जाना, उन्हें कोई स्वर्ग ही थोड़ा पहुंच जाना, कोई स्वर्ग विच उन्हें वसेबा नहीं मिल जाना। इस करके गुरुदेव ने कहा इशनान करें सदा दिन राती। अच्छा, वैसे बंदा किसी पानी विच दिन रात बैठा रवे शरीर गल जाएगा, उहदा पानी का सुभाव है। तुसी दिन रात किसी पानी दे विच बैठे रहो तो एक दो गल्लां होणियां, जां नमोनिया हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी, तो दूजा की होगा भी जिहड़ा शरीर का मास है हौली हौली गलना शुरू हो जाएगा। तो जिहड़ा गुरु सरोवर है इहदे विच भी एक चीज गलेगी, वह की है? अंदर की मैल। जिवें ना कोई भांडा मैल नाल भरिया होवे ते उत्ते बहुत ही मेहनत करन दी लोड़ नहीं, एवें उहनूं रगड़न दी लोड़ नहीं। सियाणियां माइयां बीबियां कहिंदियां ने घड़ीए नूं पानी च सुट दिओ, की होवेगा उहदे नाल? पानी उहदी मैल नूं थोड़ा जिहा

सुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक वाहिगुरु जी गौड़ी घर तेरवां फरमान तेरा सिरै उपर

ज्ञानी की निर्मल योग्यता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी की उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार ममाह, ब्रह्म ज्ञानी के ना ही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी लेता अवत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सफला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक के रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी ओम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी सगल मान माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कसिया ना जाय अदा कर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान है, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सबसे का करता, ब्रह्म ज्ञानी सर जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी उपराध, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उतारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निम्ख निम्न ठाकर नमस्कार, नानक वो अपरस सगल निस्तार, अष्टपति मिलया नाही रसना परस, मन में प्रीत नरंजन दर्श, पात्र रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल सन संगेत, करना सुने काबू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विखया परारे, मन की बात न मनते ठरे, इंद्री जित पाई दोग जे रह, नानक कोट मदे को ऐसा परस, बैसन सोजे सुपर सो प्रसन्न, बिजन की माया ते हुए पेन, कर्म कर दो हुए ने कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म, काहु बल की इच्छा नि पाशा, केवल पद कीर्तन संग्राचा, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सभी ऊपर हो उद कृपाल, आप दृढ़े अवरा नाम जपावे, नानक हो बैसनो परम घर पावे, भगवती भगवंत भगत खारंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिन से सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे निधनीत, मन तन अर्पे विष्णु प्रीत, हर के चन हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सोपंड जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में सोध है, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जाग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण से मृत बूझे मूल, सुख में जाने असूल, चौ वर्णा को देवदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सात संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतार है, पस प्रेत मुगल पाथर को उतार है, सर्व रोग का उग्र नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहु जुत कृत न पाइये धर्म, नानक जिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत राम दास, आत्म राम दास नद नहीं आया, दास संतन पाए दिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगा परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पर है, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुग नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म ही तावे, जीवन मुग्ध सो कहावे, तैसा हर तैसा उत्सुक, सदानंद नहीं वियोग, तैसा सुन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेकाठी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा रह जान, जो वर्ता ऐसा ही जुगत,
नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव जित जित जित कर राखे तै साधन नाम आपे करन करावन जोग प्रभावे सोई फनोग पसरो आप हुए अनंत रंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी माधे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जाना अंत न पार आवार नानक रचना प्रवरची बहुविध अनक प्रकार सबरी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट पह तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी कई कोट भेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नवधन नाम से आवै नानक करते का अंत न पावै कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट भिग आत्म निकोर कई कोट पर धर्म को हिरा कई कोट पर दुख न कराय कई कोट माया श्रम माय कई कोट पर देश परमाय जित जित लावो ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पाथर बिरख ने बजाए कई कोट पवन पाणी भेस अंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससिर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर छतर सगल समगरी अपने सूत तारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है कई कोट राज तामन साध कई कोट वेद प्राण सिमर दर सास कई कोट की हृदय संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की है चिर जीवे कई कोट गिरी मेरे सुवर्ण थीवे कई कोट जय किरण प्रसाद कई कोट भूत भूत प्रेत सुकर मृगाज सब थे नेरे सब ऊते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट फसाल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग नवासी कई कोट जन्म है जीवे मरे कई कोट भोजोनी फिरे कई कोट बैठ ही खाए कई कोट काले तक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय भाणा तै तै रख है नानक सब कुछ पव कह हाथ है कई कोट पय बैरागी राम नाम संगतिल निवलागी कई कोट प्रभु को खो जानते आत्म में पर ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिनको मिलियो प्रभु अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक दे जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई युग कीनो विस्तार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभु ते होए प्रमेय समाध ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभु सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेतरे कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सर सर ही जीव है कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सह संभावै अपने जन को साथ साथ संवारै नानक वोए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोए नानक तिस भरे हारणे जल थल मई हर सोए। अष्टपदी कर्ण करावन करने जोग जो पावे सोई होग खिनमे थाप थापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे धार अतार रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनग रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब मेरिया समाई प्रभ पावे मानो गुद पावे प्रभ पावे ता पाथर त्रावे प्रभ पावे बिन सार से राख है प्रभ पावे ता हर गुण पाख है प्रभ पावे ता पुत्र उधारे आप करे अपन बिचारे नौ सिरिया का आप स्वामी खेले बिकसे अंतर जामी जो पावे सोकार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मनुख ते क्या होए आवे जो दिस पावे सो ही करावे इसके हाथ होए सा सब कुछ ले जो दिस पावे सो ही करे अनजान बिगया मेरे चे ये जानते अपन आप पूछ पचै पर मैं भूला दे ता ता वै
ਨਿਮਕੇ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰੇ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਰਮੇ ਨੀਚ ਕੀਟ ਘੋਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾਗਾ ਦਿਸ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨਾ ਘਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਤ ਕਰ ਕਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਤ ਆਪਣੀ ਬਣਦਾ ਬਨਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੇ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਾਹੀ ਸਾਦ ਕਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਦ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਸਭਾ ਸੋਈ ਭੁਨ ਸੀਓ ਕਬੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਵਸੇ ਕਬੂ ਸੋਖ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹੱਸੈ

कभू महा क्रोध विकराल, कभू सर्व की ओदरवाल, कभू होए बह बठ राजा, कभू भिखारी नीच का साजा, कभू अब कीरत में आवे, कभू भला भला कहावे, जो राखे तिवी रहे गुर प्रसाद, नानक सच कहे, कभू होए पंडित करे बख्यान, कभू मोन धारी लावे ध्यान, कभू धरती इसनान, कभू से साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्त हस्त पतंग होए जिया, अनक जौन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तवे नचावे, जो सुभावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कभू साध संग जे पावे, उस स्थान से बहर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंथन राम हृदय एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, ज्यों जल मय जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योति माना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सतगुरु बान। श्लोक सुखी बसे मस्किनिया आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतराज अमान, सो नरकपति होवत सोवान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होस्त विष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे भोजन प्रभावे, तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे, तनवंता होए कर कर वावे, जन समान कह जंग न लास, संग न जावे, बहुत दुष्कर मनक ऊपर करे आस, फल पितरता का होए विनाश, सब ते आप जने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुवारी, गुर प्रसाद जा का मिटे अवमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोर कर्म करे होतारे, श्रम पावे सगले बिरतारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार, अनक जतन करे आत्म निंद्रा वै, हर दरगाह को कैसे गावै, आपक उसको जो भला कहावै, तिसे भला ही निकट न आवै, सर्व की रेण जा का मन होए, को नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब भे जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को भैरी मीज, तब लगने चलना ही चीज, जब लग मोह मग्न संग माए, तब लग धर्म राय दे से जाए, प्रभु कृपा दे बंधन टुटे, गुर प्रसाद नानक हो छुटे, सहस घटे लाखो उठतावै, तृप्त न आवै, माया पाछे पावै, अनक भोग बिखिया के करै, नहीं तृप्त आवै, खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजे, सुवन मरूर बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, मड़भागी किसे परावत होए, कर्ण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, कर्ण करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी जिस कर तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जोश किनो स्वपने रंग, सब थे दूर सबु के संग, बुझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक, मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सदी रिहा समाए, आप से समझे आप पैर जया सबके साथ, आप किनो आपन विस्तार, सब किश उसका ओ करने हार, उस दे भिन्न कहो किश होए, थान थनंतर एक कैसे होए, अपने चल तब करने हार, कौत करे रंग पार, मन में अमन अपने माए, नानक कीमत न कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद के ने वज्ञानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किन बिरले चीना, पला पला पला दृ रूप, असुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, काट काट सुनी सर्व बख्यानी, पवित्र पवित्र पवित्र पनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक संत सर

ठाकर को सेवक जाने संग प्रका सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस ते आप प्रभु धारे नानक सो सेवक सास सास मारा अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव डाय अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेवकी आपत रख है ताकि गात में तो कोई न लाख है प्रके सेवक को ना पहुंचे प्रके सेवक उते उचे जो प्र अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिसपटा निकी कीरी में कर रख है भस्म करे लाकर कोट लाख है जिसका शासन काटते आप ता को राख देख रहा थे मानस जतन कर भांत तिसके कर तप बिरथे जात मारे न रखियव न कोई सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच करहे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख बडाणी बार बार बार प्रज पिया पी अमृत एहो मन तन त्रपिया नाम रतन जिन गुण कपाया तैस केशव नहीं दृष्टाया

परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देख अखरोदा अमृत वचन हर के गुण गा प्राण तन काय सौ आठ पैर प्रभु को निरा मिटिया कान बिनसे अंधेरा सुनप दे हृदय सा मन छे नान फल पाव हरत परत दो स्वा राम नाम अंतरता पूरे गुर की पूरी दिखा जिसमन बसा ते साहब प्रीखा मंत्र ना जपो रवलाय दुख दर्द मन ते पो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर कर बैखे तुम्हारी का टेक रखो मन माए नानक पौ नया पे जाए तस्ते दूर कहाँ खो जाए उपरे राखन हार त्या ने पो जपे सर्प मिटाए प्रा कृपा ते पानी छुटाए जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होव सु चिंता जाए मिटे अंकार तिस चन को कोय न पहुंचन हार सिरु को ठंडा गुरसुआ नान ताके गज पूरा मत पूरी अमृत चाके दृष्ट दर्शन फिर उधर सेठ चरण कमल जाके अनूप सफर दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेव प्रबाण अंतरजामी पुरख प्रदान जिसमन बसे सो होत निहार ताके निकट सगल समग्री अनक रंगना नजर टाए नौ हृदय अमृत प्रखा नाम देहि मैं उसका विश्राम सुन समार अनहत ना कहन जाई अचर तेन दिखा से आप दिखाए ना ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत घट घट पिया प्रिया भगवंत तरण माया काल प्या सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बेसंत माय चार कुंट दर्शय समाय तस्ते भैनी कोटा गुर प्रसाद नान सुपाव वेद प्राण सिमरत मैं दे ससी अर सूर नखत्र मेघ पानी प्राप्ति साको बोले आप डोल नक डोले सर्व कला कर खेले खेल मोर न पय कुणे मोर सर्व ज्योत में जाके जो धार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद प्रमुखा नाथ नानक तिन में बसाद संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धन संत जना सुने सब वचन सर प्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी रहत सात वचन साधु सब का दो दो होए सो सुख माने करण करावन हर पर जाने अंतर बसे बार पियो नानक दस संदेश समोई आप सात किया सब सात तिसते तिस प्रभु तिस करे उत्पात पावितां करे विस्तार तिस पावितां एक अहंकार अनक कला लखी न जा जिस भगत सलय मिलाए कवन निकट कवन के दूर आपे आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप चनाए नानक ते जन सोजी नानक ते जन आप जाए सर भूत अवतारा सर्व नाना भिखनहारा सगल समगरी जा खतन अपन जस आप ही सुना अपन जान खेर पना आज्ञाकारी कीनी मैं सब के मद अलिप्त रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे आग्या व्याग्या जाए नानक जा पावित ले समाज ते हुए सो नाही बुरा बुरे कहो हो किने कश करा आप राकर तू तारे की आप पे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साज उत्पोते आप प्रसंग राज ताकि गत में कहीं न जाए दूसरा होए तो सो जी पाए तेका किया सा प्रवान गुर प्रसाद नानक के जान जो जाने तस्तान सुख होए आप मिलाए ले प्रसोए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन जन आया धन धन धन जना जिस प्रसाद साहब जात राज अमर कर स्वाह जन के संग चित आवे नव आप मुक्त मुक्त करे संसार ना ते चन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ राध्या पूरा जाका ना नान पूरा पाया पूरे के गुण गाट पदि पूरे गुरु का सुनप देव पार ब्रह्म लिख कर फिर सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतर चंद आस अनित त्याग कुतरा संजना की धूर मन मांग आप छोट बेनती करो साध संग अगन सागत रो हतन के पर दे भंडार नानक कर पूरे नमस्कार खेम कुशल साज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो कुन गोविंद अवतरासी चैत चितपो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दया दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिम नाम बारंपार नानक जी का एह दार उत्तम सलो सार के वचन अमरीक लारे तन संकमात होतार आप तेरे लोके नस्तार सफर जीवन सफरता का संग जाके मल्ला कर रंग जय जय शब्द नार पा दे सुन सुन अन करे प्रगा दे प्रगटे गोपाल महंत के माते नान कुदरे तन के साथे सण जो सुन सरणी आए कर कृपा प्रया मिलाए मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नाम साथ संग लैन सो प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल विका तेरा ते राम नाम सुन सुना कहते कर प्रसाद दया प्रतारी नानक भीखे पर मारी प्रभु की उस करो सन भी साफ धन का गरचेत है सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिसमन बसै सो हो तन दान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रगट सा लोए सब ते उठ पाए स्थान बहर न हो पे अपन जान हर तन खार चले जन सोए नान जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बोध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप योग प्रत्यान
ज्ञान सेठ उत्तम मिश्रा चार पदा कर्ण प्रकाश सब के मर सगत के उदा सुंदर चतर तत् का बेता समदासी एक दे टेता ए फर दे चन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन गुरु नानक नाम बचन मन सुने उदान जपे मन कोय सब जुग में ताकि गत होए गुण कुवन नाम तुन पाणी सिमर साहित बेद बखाणी सगल मतंत के भर नाम गुण पात के मन विसरा कोट फरार साध समिटै संत कृपा ते जमते छुटै जाके मस्तक करम प्रपाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनेला प्रीत तिस चन आपे हर प्रचीत जन्म मरण ताका दुख निवार है दुर्लभ देह तत्काल उदार है निर्मल शोभा अमृत ता की बाणी एक नाम मन महे समानी दू

नित नानक नाम त्याई, अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम त्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरु का। वडभागी हो सतगुरां दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के रब्बी बाणी दे कीर्तन। सतगुर की पावन बाणी श्री सुखमणी साहब दे पाठ नाल आप जी ने सांझ बनाई है। अज दे इह विशेष समागम बराड़ परिवार वालों अते चहल परिवार वालों बच्ची इबरत कौर बराड़ दे पहले जन्मदिन की खुशी विच उलीके गए सन। सतगुरु चढ़दी कला बख्शन, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव साढ़े सारिया दे हिरदियां ते वसे, क्योंकि दुनिया की वाहिद इको

आलक पार ब्रह्म। आपने रंग करता खेल, आप बिशोर है आपे मेल। एक परम एक भगती लाए, अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी, जो बोलै सो पेख आखी। नहीं लेप तेन पुन न पाप, नानक का प्रभ आपे आप। राम कली महला पंजवा। किछु काज न कियो जान, सुरत मत नाही किछ ज्ञान। जाप ताप सील नहीं धर्म, किछु न जान्यो कैसा कर्म। ठाकर पीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा यवन न कोई। भूलै चूकै प्रभ तेरे रहाउ, हरदन बुद्ध।

चीत सब ते उत्तम है कर्म धर्म सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए आधार जन्म जन्म का उतरे पार पूरन तेरी होवे आस जम की कटिया तेरी फास गुर का उपदेश सुनी जय नानक सुख सहज समीजै राम कली महला पंजवा जिस की ते सिखी कर मान आपन लाहे गमान जिसका तू तिसका सब कोए तिसे आराध सदा सुख होए काहे पर मैं भूले बगाने नाम बिना कुछ काम न आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने राहो जो जो करे सोई मान ले बिन माने रल होवे खी तिसका पाना लागे मीठा गुर प्रसाद गले मन बूठा वे परवाह अगोचर आप आठ पैर मन का तो जाप जिस चेत आए विन से दुखा हालत पालत तेरा उजल मुखा कौन कौन उधरे गुन गाए गण न काई कि न पाए बूट तलो सा संग तरे नानक जिसे प्राप्त करे राम कली मल्ला पंजवा मन माहे चा भगवंत गुर पूरे ए दिनो मंत मिटे सगल पै त्रास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किछ कह न जाई साचे सच अलका पेवा रहाओ कारण करावन हार कारण करावन आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा करनीत सत सहज सुख पावे मीत साहेब मेरा अत पारा खिन में थापो थाप नारा तिस बिन अवर न कोई जन का रखा सोई कर कृपा अरदास सुनीजे अपने सेवको दर्शन दीजे नानक जापी जप जाप साब ते ऊच जा का प्रताप राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक आवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास एको नाम ते आए मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन चरण कमल हर शरण मन तन हर ओहि ध्याया आनंद रूप आनंद हर रूप दिखाया तिस ही की ओट सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निधान राखन हार निधान सर्व की रेन होवी जय आप मटाए मिली जय आनंदन त्याये नाम सफल नानक काम राम कली महला पंजवा कारण करन करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लाह अलख पार खुद खुदाए वड बेशुमार ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रया सर्व ठाई राओ जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रतमय आराधो अरिखी केस गोविंद गो गोपाल गोविंद पूर्ण बस्तर पूर्ण बस्तर मुकुंद मेहरबान मौला तुई एक पीर पैगंबर शेख दिला का माल कर हाक कुरान कतेव ते पाक नारायण नरहर दयाल रमत राम कट कट आधार वासदेव बस

राम काली महला पंजवा। दर्शन को जाइए कुरबान, चरण कमल हृदय दर ध्यान, तोर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन की दुर्मत मल जाए। जिस भेटत मिटे बमान, पार ब्रह्म सब नजरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ। गौर की कीर्त जपिए हर नाओ, गौर की भागती सदा गुण गाओ। गौर की सूरत निकट कर जान, गौर का शब्द सत करमान। गौर बचनी संसार दुख सा दुख सो दुख सुख, कदे ना व्यापे तृष्णा भूख। मान संतोख शब्द गुरु राजे, जाप गोविंद पढ़े सब काजे। गौर परमेश्वर गुर गोविंद, गुर दाता दयाल बख्शिंद। गुर चरणी जाका मन लागा, नानक दास धन पूर्ण भागा। राम कली महला पंजवा। किस परवासे विचरे भवन, मूड़ मुगत तेरा संगी कवन। राम संगी तस गत नहीं जाने, पंच बटवारे से मीत कर मन। सो कर सेव जत उतरे मीत, गुण गोविंद रवि है दिन राती। साध संगर मन की प्रीत रहाओ, जन्म बिहानो अहंकार अरवाद। तेरे तनावे विख्या साध, परमत परमत महा दुख पाया, तरी न जाई जो तर माया।

जो कृपा हुए पातत पनीत प्रभ तेरो नाम, आपने दास को दीजे दान, कर कृपा प्रभ गत मेरी, शरण गई नानक प्रभ तेरी, राम कली मल्ला बंजवा। ए लोको सुख पाया ने भेट तरम राया, हर दरगा शोभा बंत, पन गर्म नहीं बसंत, जानी जानी संत की मृताई, कर कृपा दिनो हर नामा, पूर्व संजोग मिलाई रहाऊ, गौर के चरण चित लागा, तन तन संजोग सुभागा, संत की तूर लागी मेरे माथे, केल बेख दुख सगले मेरे लाथे, साध की सच टहल कमानी, तब हुए मन शुद्ध परानी, जन का सफल दस डीटा, नाम प्रभु का कट कट बूठा, मटाने सब गए कले मटाने सब कल कलेस, जिस दे उपजे तिस माहे प्रवेश, प्रगटे अनूप गोविंद, पूरे नानक बख्शिंद, राम कली महला पांचवा। गौ को चारे सार तूल, कौडी का लख हुआ मूल, बकरी को हस्ती पत पाले, अपना प्रभु नजर निहाले, कृपा निधान पीतम प्रभ मेरे, वर्णन साको बहुगुण तेरे रहाओ, दीसत मास न खाए कल बलाई, महा कसाब छूरी सटपाई, गर्ण हार प्रभ हृदय बूटा, पाती मछली का जाला टूटा।

राम काली महल्ला पंजवा। राजा राम की शरण आए निरपो पय गोविंद गुण गावत साध संग दुख जाय रहाऊ। जाके राम बसे मन माही सो जन दुतर पेकत नाही सगले काज सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जबने। जिसके मस्तक हाथ गुर धरै सो दास आदेशा काहे करे जन्म मन की चुकी कान पूरे गुर उपर करवाण। गौर परमेश्वर भेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिस कृपा करे साध संग सो पर जल तरे। अमृत पियो साध प्यारे मुख उज्जल साचे दरबारे आनंद करो तत् सगल विकार नानक हर जब उतरे पारे। राम कली महला पंजमा ईंधन ते बसंतर पा गई माटी को जल दै जिस त्याग गए। ऊपर चरण तले आकाश काट में सिंध की ऊपर गास ऐसा समर्थ हर जीव आप निवकना विसरै जी भगवंत के जी आकाश। भगतन की आठ मन को जा पढ़ाओ प्रथमे माखन पाछे दूध मैल किनो साबन शुद्ध। पैते नरपो डरता फरे होंदी को आन होंदी हरे देही गुप्त बदेही दिसै सगले साज करत दग दिसै। ठगन हार अन ठग दा ठागै बिन वखर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो वखियान सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोई नानक ताकि परम गत होए तना। राम कली महला पंजवा। ज्योत पावे सोथिया सदा सदा हर की शरण आई प्रभ बिन नाही आन भी अरहाओ। पुत्र कलेतर लक्ष्मी दिसे इन मैं किछु न संग लिया विखिठ गौरी खाए पलाना माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत बगुता गर्भ जोन मैं किरत पया पुरब कमाने छोड़े नाही जम दूत ग्रह सो महा पया। बोले चोट कमावे अबरा तिरसन बुझै बहुता होया बहुता है असाध रोग उपजया संत दोखन दे बनासी मां खया। जिने नवाजे तिन्ही साजे आपे किने संत जया नानक दास कंट लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली महला पंजवा। ऐसा पूरा गुर दियो सहाई जाका सिमरन बिरतन जाई रहाओ। दर्शन पेखत होत निहालो जागी तूर काटे जम जाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्ज सवारे सगले तन के। जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो नाथ को नाथ पतत धारण कृपा निधान सदा सदा जाइए करवान। निर्मल मंत दे जिस दान तजे विकार बिन सेव महान। एक तिहाई साध के संग पाप विनाशे नाम के रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घाट घाट रव रे अगुणतास। दास धारो प्रभ आस नित नानक चितवे सच अरदास। राम कली राग राम कली महला पंजवा। घर दूजा दो पदे कुंकार सतगुर प्रसाद गावो राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाइए आवा गौण मिटे मेरे मीत रहाओ। गुण गावत होवत प्रगास चन कमल मैं होए निवास संत संगत मैं उधार नानक पावे लो तरस पार। राम कली महला पंजवा। गौरम पूरा मेरा गुरु पूरा राम नाम जप सदा सहले सगल बनासी रोग कूरा रहाओ। एक रादो साचा सोए जा की शरण सदा सको होए। नींद सहेली नाम की लागी भूख हर सिमरत बिन से सब दुख सहज आनंद करो मेरे भाई गुर पूरे सब चिंत मटाई। आठ पैर प्रभ हर का प्रभ का जाप जप जाप नानक राखा हुआ आप। राग राम कली महला पंजवा। पड़ताल कर तीजा ओंकार सतगुर प्रसाद। नरन है नमस्कार जलन तलन शुद्ध गगन एक एक अंकार रहाओ। हरम तरन पुन बनय करन नय ग्रह निरंकार निरंहारिंग पीर तीर नाम हीर ऊच मूच अपारंग
कर्ण केल गुण अमोल नानक बलिहार राम कली महला पंजवा रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले माया छले कनक कावनी रहाओ भंडार दर्ब अरब खरब पेख लीला मन सधारे नह रंग गामनी नह रंग गामनी सत कलेत्र भरात भी तुरजो परयो परम मोहे ए बिरख शामनी चरण कमल चरण नानक सुख संत पावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली राग राम कली महला नौमा तिप दे रे मन ओट लेहो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासे पावे पद निर्वाणा रहाओ वट पागी रे जन को जाने जो हर जन के गुण गा हर के गुण गावे जन्म जन्म के पाप खोए कै फुन बैकुंठ सधावै अजा मल को अंत काल में नारायण सदयाई जहाँ गत को जोगी सरबास सो गत जिन में पाई नाहन गुण नाहन कुछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम का देखो अवे दाने नीना राम कली महला नौवा साधो कौन जुगत अब कीजे जाते दुर्मत सकल बनासे राम भगत मन भिजे रहाओ मन माया में उज्ज रहे है बुझे न कुछ ज्ञाना कौन नाम जग जाकै सिमरे पावे पद निर्वाणा पै दयाल कृपाल संत जन तावे बात बताई सर्व धर्म मानो तह किए जे प्रभ कीर्त गाई राम नाम नर निश्चर बासर मैं निमक एक और तारै जम को त्रास मिटे नानक ए अपनो जन्म सवारे राम कली महला नौवा प्राणी नारायण सुध ले छिन छिन औद कटे निसबासर बिरथा जात है दे रहाओ तरनापो विखियन सियो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजूनी समझे कौन कुमत रजाना मानस जन्म दियो जे ठाकर सोतै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर के सिमरे निमक ना ता क्यों गायो माया को मद कहाँ करते संग न काहु जाई नानक कहत चेत चिंता मन होए अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े से तारे सोई दनियर तप्त रहै सा धरती सो पौन चलारे जुग जिया खेले थाव कैसे जीवन तलब नवार होवे परवाना कहे सधाणा कहे ध्याणा कल लखन विचार हाओ किते देश ना आया सुनिया तीर्थ पास ना बैठा दाता दान करे तन नाही महल उसार ना बैठा जे को सत करे को छीजे तप कर तप ना हुई जे को नौ लय बदनावी कल के लखन ही ਜੇ ਸਕਦਾਰੀ ਤਿਸੇ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕੇ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾਰੇ ਪਵੇ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾਂ ਚਾਕਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਆਖ ਗੁਣਾ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇਹ ਜੁਗ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਤਬਾਫਸ ਜੇ ਗੁਣ ਦੇਹ ਤਬਾਈ ਹੈ ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਸਰਾ ਨਵੇੜੀ ਕਾਜੀ ਤਿਸ਼ਨਾ ਹੋਆ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਅਵਰਣ ਕਰਨੀ ਕੀਮਤ ਲਿਆ ਪਤਬਿਣ ਪੂਜਾ ਸਤਬਿਣ ਸੰਜਮ ਜਤਬਿਣ ਕਾਹੇ ਜਨੇਊ ਨਾਵੋ ਤੋਵੋ ਤਿਲਕ ਚੜਾਵੋ ਸੱਚ ਬਿਨ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ ਕਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਤੇਵ ਕਰਾਣ ਪੋਥੀ ਪੰਡਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਨਕ ਨੌ ਭਇਆ ਬਿਰਹਿਮਾਨ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਇਦੂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਾਹੀ ਜੇਕਰ ਹੋਂਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੇ ਤਹੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਮੜੀ ਵਧਾਵੋ ਆਸਣ ਤਿਆਗ ਕਾਹੇ ਸਚ ਪਾਵੋ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਕਾਮਣ ਤਕਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਧੋਤੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋਗੀ ਬੈਸ ਰਹੋ ਦੁਬਧਾ ਦੁੱਖ ਭਾਕੈ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਤ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਗੈ ਰਹਾਉ ਗਾਵੇ ਗੀਤ ਨ ਕੀਨੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਲਾਗੀ ਨਿਵਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਚੇ ਮਨ ਮਾਏ ਭਿਖਿਆ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਏ ਭਸਮ ਚੜਾਏ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਮਾਇਆ ਮੋਹ
कोस है जम डंड, फूटे पाखर पीख ना पाए, बंधन बाध्या आवे जाए, बिंदु न राखे जति कहाँ आवे, माई मागत त्रै लुभावे, निर्दया नहीं जो तो जल्ला, बूढ़ बूढ़े सर्व जल्ला, पेक करया पेक करै खिंता बहु बटुआ, झूठो खेल खेले वो लटुआ, अंतर अगन चिंता वो जारे, बिन कर्मा कैसे उतर बारे, मुंद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लवाना, पशु पै नहीं मिटे निशाना, त्रिबद लोगा त्रिबद जोगा, शब्द विचारे चुक सोगा, उज्जल साच तो शब्द होए, जोगी जोगत विचारे सोए, तुझ पै नौ नद तू करने जोग, थाप थापे करि सोहोग, जत सब संजम सच सरीत, नानक जोगी तृपण मीत, राम कली महला पंजवा। पहला, खटमट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तुन अंतर जागी, वाजे आनंद मेरा मन लीना, गुर बचनी सच नाम पथीना, प्राणी आराम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाई रहा, माया मोह बेवरज समाए, सतगुर पेटे मेल मलाए, नाम रतन निर्मोलक हीरा, तित राता मेरा मन तीरा, हौमै ममता रोग न लागे, राम भगत जम का पौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सो है, शब्द विचार पै निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत पर हारी, आंदन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गतंत्र पाई, अलिप्त गुफा में रहे निरारे, तस्कर पंच शब्द सिंघारे, पार कर जाए न मन डलाए, सहज निरंतर हो समाए, गुरमुख जाग रहे अतूता, सदा बैरागी तत् प्रोता, जग सूता मर आवै जाए, बिन गुर शब्द न सोझी पाई, आनंद शब्द बजे दिन राती, आवेग तकागत गुरमुख जाति, तो जानी का शब्द पछानी, एको रब रहा निरवानी, सुन समाध सहज मन राता, ताज हो लोभा एको जाता, गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला। साहा गणत न कह करे विचार, साहे उपर एक अंकार, जिस गुर मिले सोई बिद जाने, गुरमत होए तो हुक्म पछाणे, झूठ ना बोल पांडे सच कहिए, होमै जाए शब्द कर लइए रहा, गण गण ज्योत कांडी कीनी, पढ़े सुनावे तत ना चीनी, सबसे उपर गुर शब्द विचार, होर कथनी बदो न सगली शार, नावै तो वै पूजे सैला, बिन हर राते मैलो मैला, गर्भ नवार मिले प्रभ सारथ, मुक्त प्राण जप हर किरदार्थ, वाचे वाद न वेद विचारे, आप डूबे क्यों पितरा तारे, घट घट ब्रह्म चीने जन कोए, सतगुर मिले त सोझी होए, गणत गणिये सहजा दुख जिया, गौर की चरण पवे सुख दिया, कर आराध शरण हम आया, कर अपराध शरण हम आया, गौर हर पेटे पुरब कमाया, गौर शरण आइये ब्रह्म न पाइये, परम भलाइये जन्म मराय मर आइये, जमदर बादो मरे बेकार, ना हृदय नाम ना शब्द आचार, एक पांदे पंडित मिसर कहाँ आवै, दुबदा राते महल न पावै, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मदे को जन अद अपार, एक एक बुरा भला ऐसा टेका है, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेका है, गुरमुख वेली एको जाने, आवन जाना मेट समानिया, जिनके हृदय एक अंकार, सर्व गुणी साचा विचार, गुर कै पाणे कर्म कमावै, नानक साची साच समावै, राम कली महला पहला। हट गिरहो कर काया छीजे, वर्त तपन कर माने पीजे, राम नाम सर अवर न पूजै, गुर सेव मना हर संग कीजै,
जम जंदार जो है नहीं सके सरपन डस ना सके हार का जस पीजे रहाओ। वाद पड़े रागी जग पीजे त्रै गुण मिथ्या जन्म मरीज है राम नाम बिन दुख सही जय चाड़स पवन सिंघासन पीजे न्योली कर्म खट कर्म करीजे राम नाम बिन बिरथा सास लीजे अंतर पंच आगन क्यों तीर दती जय अंतर चोर क्यों साध ली जय गुरमुख होए काया गढ़ ली जय अंतर मैल तीर्थ परमी जय मन ने सोचा क्या सोच करी जय किरत पया दोष का को दीजय अन्न ना खाए देही दुख दीजय बिन गुर ज्ञान तृप्त नेम थी जय मन मुख जन्मे जन्म मरीजय सतगुर पूछ संगत जन कीने मन हर राते नहीं जन्म मरीजय।

महाप्रभ प्रभ की जय। राम कली माला पड़ा अंतर उत्पज अवर न कोई, जो कहिया सो प्रवते होई। जुगा जुगंतर साहब सच होई, उत्पत पर लो अवर न कोई। ऐसा मेरा ठाकर गैर गंभीर, जिन जपया तिनी सुख पाया। हर के नाम न ना लगे जम तीर रहाओ, नाम रतन हीरा निर्मोल। साचा साहेब अमर अतोल, जेबा सोची साचा बोल। करदर साचा नाही रोल, एक बन मैं वैसे डूगर स्नान। नाम विसार पचे अभिमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान। गुरमुख पावे दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे। पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद न जावे। नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई। मनुआ डोले नरके पाई, जम पर बादो ले सजाई। बिन नावे जीव बल तल जाई, सिद्ध साधक जैसे मन देवा। हट निगरह न तृप्ता पेवा, शब्द विचार गहर गुर सेवा। मन तन निर्मल अभिमान पेवा, करम लै पावे सच नाओ। तुम शरणागत रो सुभाओ, तुम ते उपजो भक्ति पाओ। जप जापो गुरमुख नाओ, होमे गर्भ जाए मन भिन्ने। झूठ न पावस पाखंड दीने, बिन गुर शब्द नहीं करवार। नानक गुरमुख तत् विचार, राम कली महला पहला। ज्यों आया तो जावे बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरन पया। ज्यों रस भोग किए तत् दुख लागे, नाम विसार पव जल पया। तन तन देखत गर्भ गया, कनक कावनी स्यों हेत वधाई। किए नाम विसारे परम गया रहाओ, जात सत संजम

काल गया ऐन सिंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्वदया बिन गुर शब्द न गत मित पावे राम नाम बिन नरक गयो खिन मैं वेश करे नटुआ ज्यो मोह पाप मैंगल तरया ए तोत माया देख पसारी मोह माया के मगन पया करै विकार विथार कनेरे सुरत शब्द बिन परम पया हौमै रोग महा दुख लाग गुरमत लेहो रोग गया सुख संपत क्यों आवे देखा साकत मन अभिमान पया जिसका ये मन तन सो फिर लेवे अंतर सहसा दुख पया अंत काल किस साथ न चाले जो दिसे सब तिसे मया आद पर

बचारी आप जगाए से जागे गोरकाय शब्द बिचारी नानक से मुए जे नाम न चेते भगत जीवै बिचारी। राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया तृप्त रहे अगाई संतो।

साधे काहू बिहावे लौट संग नारी संत रचे केवल नाम मरारी काहू बिहावे खेलत जुआ काहू बिहावे अमली हुआ काहू बिहावे पर दर्ब चुराए।

जाई, बेश मार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई, अकाल मूर्त अजूनी संभ्यो कल अंधकार दीपाई, अंतर जामे जियन का दाता देखत तृप्त अगाई, एक अंकार निरंजन नृपो।

संतो आप बेअंत अंत नहीं पाइये पूरया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोवन सत हर नानक बाब मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच करम राम नाम चतारी कुमन गेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार अतारी रहाओ अंतर सुखा

एक केवल नाम आधारी, ना कोई सूर ना कोई हीना, सब प्रगटी जो तुम्हारी, तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मरारी, कीमत कौन करे।

आनंद एक ओहंकार सदगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तो पाया सहसे थी मन वजिया वधाया। राग रतन परवार भरिया शब्द गवन आया, शब्द तो गावो हरि के राम मन जिने वसाया। कहे नानका आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले, हर ना रो तू मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सुवारना, सबना गला समरा।

ना पाया, चतराई ना पाया, कहने तू सुन मन मेरिया, ये माया मोहनी जन एत परम पलाया, माया दा मोहनी तेने किती जन ठगौली पाया, कुरबान किता तिसे बिटो जन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया, ये मन मेरे तू सदा सच संभाले, यो कुटुंब जे तू देखता चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही, इस नाल क्यों चतलाई है, ऐसा काम मूरे न किते नित अंत पछोताई है, सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम ओचरा तेरा अंत न पाया, अंत न पाया, कहने तेरा अपना अपन तू जाने, जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख बखाने, आखा ता वेखे सब तू हे जन जग तो पाया, कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया, सुन नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर पिपा किन्नी सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तो पाई एक वेख परसन आया, लाभ लोभ अहंकार चुका सत गुरु भला पाया, कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया, भगतां की चाल निराली चाला निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार तज दिसना बहुता नहीं बोलना, खन्यो तिखी वालो निक्की एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली, जो तू चलावै तिवें चलै स्वामी होर के जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए तिवें चलै जिना मार्ग पावै, कर कृपा जन नाम लाए से हर हर सदा त्यावै, जिसनों कथा सुनावे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावै, कहे नानक सचे साहब जो पावै तिवे चलावै, एहो सोला शब्द सहावै शब्द सुहावा सदा सोहला, सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरो लिखिया आया, एक फिरे कनेरे करा गल्ला गली किने ना पाया, गली किने ना पाया, कहे नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया, पवित हुए से जना जिन्नी हर त्याया, हर त्याया पवित हुए गुरमुख जिन्नी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सह सियो पवित संग सवाइया, कहते पवित सुनते पवित से पवित जिन्नी मन वसाया, कहे नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर त्याया, करमी सहज न उपजाए बिन सहजे सहसा न जाए, नह जाए सहसा रे किते संजम रहे कर्म कमाए, सहसे जियो मलिन है कित संजम तोता जाए, मान तो शब्द लागो हर सो रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ओ सहसा ए बजाए, जियो मैले बाहरों निर्मल बाहरों निर्मल जियो त मैले, तिनी जन्म जुए हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनो बिसारिया, बेदा में नाम उत्तम सो सुनियो ना ही फिरे जो बतालिया, कहे नानक जन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बाहर निर्मल बाहर ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी कोड़ की सोए पहुंचे नाही मानसा सच समाणी, जन्म रतन जिन्नी खटिया भले से बनजारे,

पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, बजाया बाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवा द्वार दिखाया, तै अनेक रूप नाव निद तिसता अंत ना जाई पाया। कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहला साते कर गावो, गावो ता सोहला कर साते, जिथे सदा सत त्यावै सचो त्यावै, जा तुद भावै गुरमुख जना बजावै। ए सच सबना का कसम है, जिस बख्शे सो जन पावै, कहे नानक सच सोहला सचे कर गावै। आनंद सुनो बड़पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुने सची बाणी, संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जाने, सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सदे कुमकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोई भगत वसल ते लोए जियो, गुर शब्द समावे अब न जाने कोई जियो, अवर न जान शब्द गुर के एक नाम दे आवे, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पद भी पावे। आया हकारा चलन वारा हर ना हर राम नाम समाया, जग अमर अटोल अतोल ठाकर भागती हर पाया। हर भाणा गुर पाया गुर जावे हर पसास कियो, सतगुर कहे हर पै बेनती मेरी, पैज रखो अरदास जियो, पैज रखो हर जनो केरी, हर देहो नाम निरंजनो, अंत चलदियां होए बेली जम दूत काल निखंजनो, सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो, हर धार कृपा सतगुरु मिलायो, धन धन कह सवास जियो, मेरे सिख सुनो पुत भाईओ, मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो, हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे सवास जियो, भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे, आनंद आनंद वाजे वजे हर आप गल मिलावे, तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो, तुर लिखिया परवाना फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो, सतगुर भाणे आपने वह परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया, मित पैजे मित बिकसे जिस मित की पैज भावे, तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पहनावे, सतगुरु प्रतख हुंदे बै राज आप टकाया, सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया, अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े प्राण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंगुर भावे, पिंड बदल क्रिया गुर जीव हर सर पावै, हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो, मोरी पुत सनमुख हुआ रामदास पैरी पाए जियो, सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवे नाही फिर सतगुरु आन निवाया, हर गुरै भाणा दी वड़ियाई तुर लिखिया लेकर जाए जियो, कहे सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो, राम कली महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजना साजनना मेरा साजनना, निकट कलोयड़ा मेरा साजनना,
ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇਨਣਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਕਟ ਕਟ ਸੋਇਆ।

मत मिलन न जाई परम तड़ा। कहो नानक गुरबिन नहीं भूत सूझे, हर साजन सब कह निकट खड़ा। गोविंदा मेरे गोविंदा, प्राण आधारा मेरे गोविंदा। कृपाला मेरे कृपाला, दान दतारा मेरे कृपाला। दान दतारा अपरापारा, घट घट अंतर सहनिया। एक दासी धारी सदल वसारी, जिया जंत लै मुनिया। जिसनों राखे सोचत भाखे, गौर का शब्द विचारा। कहो नानक सो प्रभ को पाणा, तिस ही को प्रभ प्यारा। माणो प्रभ माणो मेरे, प्रभ को माणो। जानो प्रभ जानो स्वामी, सुगड़ सजाणो। सुगड़ सजाणा सद प्रधान, अमृत हार का नामा। चाख गाणे सारंग पाणी, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन ही त्याया, सगल तिसे का माणो। कहो नानक तिर तख्त निवासी, सच तिसे दीवाणो। मंगला हर मंगला, बेरे प्रभ कह सुनिए मंगला। सोहलड़ा बब सोहलड़ा, आनहद धुनिए सोहलड़ा। आनहद बाजे शब्द गाजे, नित जिसे वधाई। सो प्रभ ध्याई सब कुछ पाइए, मरे न आवे जाई। चुकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणिया। कहो नानक कर कर प्रभ मेरे कह, नित नित मंगल सुनिया। राम कली महला पंजवा, हर हर ध्याए मना खिन न विसारी है। राम रामा राम रमा, कंठ उर धारी है। उर धार हर हर प्रा पुरख सुजान, पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूत करता पाप हरता, दूसरे दुख पव खंडनो। जगदीश ईस गोपाल माधो, गुण गोविंद विचारी है। बिनवंत नानक बिन संग साध संग, दिनस रहन निश्चितारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिर्क भंडार नाम अनंत तरा। नाम नर हर नान जन कै, रस भोग एक नारायणा। रास रूप रंग अनंत, बीठल सास सास ध्याणा।

आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जान नहीं देख चलत दयाल सुन भगत बखाने जी जंत सब तुझे ध्यावै पुरख पत परमेसरा सर्व जाच केक दाता करना मैं जगदीसरा साधु संत सजान सोई जिसे प्रभ की मन ही बनवंत नान करो कृपा सोए तुझे पछानी मोहे निर्गुण नाथ चरनी आया बाल बाल बाल गुरदेव जन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशलतिया सर्वेच्छा पुनिया जल ने बजाई शांदाई मिले चिरी बछुनिया आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुर पूरे ते पाया राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाद नित उठ गाइए संत कहे केलवे सब दोख बनासन हर नाम जपिए गुरमंथन के हर नाम लीजे अम्मियों पीजे रैन दिन साराधिये योगदान अनेक करिया लग चरण कमल साधिये पाओ भगत ध्यान मोहन दुख सगले पर हरे बिनवंत नानक तरे सागर त्याए स्वामी नर हरे सुख सागर गोविंद सिमरन भगत रावे गुण तेरे राम नंद मंगल गुर चरनी लागे पाए सुख घनेरे राम सुख निदान मिलिया सुख दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हार चरण लागा परम पो पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रहिए प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभ दामोदर माधो अंत न पाइए गुणी राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारण मोह रोग मोह सोग विकार विकड़ जपत नाम धारणो सब जिया तेरे प्रभ मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ माया की जय नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भक्त जना अपनी चरनी लाए राम आठ पैर अपना प्रभ सिमरो एको नाम त्याए राम ते आए सो प्रभ तरे भाव जल रहे आवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना सब इच पुनी आजपुरी मिले साध गुर पूरिया बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख विसुरिया राम कली महला बंजवाओ शांत सलोक चरण कमर शरणागति आनंद मंगल गुण गाम नानक प्रभ आराध्य विपत निवारण राम शांत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवरना कोई जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल मैयल सोए जियो जल थल मैयल पूरिया एक निमक मनो नाम बिसरय गुरु चरण लागे दिन सभागे सर्व गुण जगदीसरै कर सेव सेवक दिनस रैणी तिस भावै सो होए जियो बल जाए नानक सुखदाते प्रगास मन धन होए जियो सलोका

प्रभयाय जियो। गृह लाल आए पूर्व कमाए ताकि उपमा के आगणा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण पणा आपे मिलाए गए कांट लाए तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते सब मैं रहा समाए जियो। राम कली मोहल्ला बंजवा रण चुंजनना गाओ सखी हर एक नाम ते आवो सतगुर तुम सेव सखी मन चंदड़िया पल पावो। राम कली महला पंजवा रुती सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बंधन पर पार ब्रह्म बाछो साधै धूर आव निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर। किलब काटन हार पै हरन पन सुख सागर हर राय दीन दयाल लुक भजनो नानक नीत त्याय। शांत जस गावो बड़ भागियो कर कृपा भगवंत जियो। रुति महाभूत कहानी गुण उच्चरत शोभा जन बंत जियो। गुण रंग राते धन ते जन जिन्नी एक मन त्यायो सफल जन्म भया तिनका जिन्नी सो प्रभ पाया।

दास जियो कार नाहो ने चलन आनंद सखिए चरण कमल फुलिया सुंदर सुगण सजान बेड़ा गुण गोविंद मल्लिया वड़ भाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो सलोक साध संगत बिन भरम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन वाधिया नानक कर्म लेख जो पाणे से मिलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ शरणा की जाका वड़ प्रताप संत ग्रीकम रुत अत काकड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शो दहागणी दृष्ट ना करी राम जियो नै दिस्त आवे मृत हावे महागर्भ मुठिया जल बाजो मछली तड़बुड़ाई संग माया रुठिया।